0: ने में अमरारा जीविया में सारा मैं के भी हाथ मोरा दी प्रेम में अमरारा ओ प्रेम में अमरारा
1: लाखांडा रेडियो आईटीएन